0: करने पहल का तेल ग्यालबलम प्रविधि से बनल आलमोनियम कोटेड सादा और रंगीन जस्ता पाता गुलास जुड़ा कलर और से तीन गुणा बेसी विश्वसनीय प्रतिरोधात्मक आतिकाल है छे
1: तीन गुणा बेसी जिके जाए
0: हुलास छे ता और कथिले खोज दे।

साथी धुमधाम राइट सपन नयाँ इभी मेरो दियागो इभीसँग लाइट छ सुपर फन. Elders love it, so do the young. It's safe.